0: मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मैं आज आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं, करूं? हां कहने में क्या जाता है। हमने कुछ समय पहले हमारी इंडियन डायस्पोरा के बच्चों के लिए एक नया प्रयोग किया है। हमारे बच्चे भारत को समझें और भारत की विविधता की बात दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए हमने भारत को जानो क्विज इसकी शुरुआत की है। अभी इसका कर्टेन रेजर ही हुआ है और हमारे साथियों ने इसमें ही जिस एनर्जी से पार्टिसिपेट किया है, मैं वही देखकर बहुत प्रभावित हूं।
1: Defense Minister Rajnath Singh has said today that India is building a strong, self-reliant and future-ready defense force by strengthening both conventional defense capabilities and advanced technologies. He said future wars may employ artificial intelligence and other emerging technologies, but they will ultimately be won by national resolve, courageous soldiers and capable military power. The defense minister said technology and conventional military strength complement each other and India is committed to excelling in both under the vision of Atmanirbhar Bharat. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the sixth Project 17A indigenous stealth frigate into the Eastern Fleet at Visakhapatnam today. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defense capability.
2: मल्टी फंक्शन राडार के साथ
3: इट हैज अ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कॉम्बिनेशन विद अ मल्टी फंक्शन राडार दैट कैन डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय एनी थ्रेट कमिंग फ्रॉम द स्काई फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड इट हैज एन इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर टॉर्पेडो लॉन्चर्स एन इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम एन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एंड अ क्लोज इन वेपन सिस्टम टू दीज ऑल थिंग्स मेक INS Mahendragiri एज इनविंसिबल एंड स्ट्रॉन्ग एज द Mahendragiri माउंटेन
2: Mahendragiri पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती है।
1: Union Home Minister Amit Shah has appealed to the younger generation to connect with libraries, highlighting their significant role in shaping an individual's personality. Inaugurating the Jayaprakash Narayan Public Library in New Delhi today, Mr. Shah said that Lok Nayak Jayaprakash Narayan was a great freedom fighter, thinker and national leader who made remarkable contributions to the country. He emphasized that reading is essential for understanding the country and its people. Highlighting the role of libraries in nation building, the Home Minister said they are a powerful medium for spreading country's culture and knowledge among the masses along with modern education.
4: The foundation of all activities that advance the nation comes from knowledge, from wisdom, and from putting that wisdom into practice. And that knowledge comes only and only from libraries. I want to appeal to our younger generation, once connect with a library, you will see an amazing refinement.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: கூடை பண்பலை 100.5 இந்த நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் வழங்கும் சேலம் தி காவேரி என்ஜினியரிங் காலேஜ் அட்டானமஸ், மங்களன் மங்கள், திருச்சி மற்றும் சேலம், குமாரபாளையம் எக்ஸல் என்ஜினியரிங் காலேஜ் அட்டானமஸின் நல்வாழ்த்துக்கள்.
2: நேயர்களின் இதயங்களை இசையால் நினைத்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் கூடை பண்பலை 100.5. நேரம் 6:22.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: கூடை பண்பலை 100.5 இந்த நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் வழங்கும் சேலம் தி காவேரி என்ஜினியரிங் காலேஜ் அட்டானமஸ், மங்களன் மங்கள், திருச்சி மற்றும் சேலம், குமாரபாளையம் எக்ஸல் என்ஜினியரிங் காலேஜ் அட்டானமஸின் நல்வாழ்த்துக்கள்.